बलहर जाओ सो निर्मल, निर्मल हर गुण गावे सो पाई मेरे मन पावे। जेह कट राम रहया परपूर।

0: बचा चले, सिखी की हम नींव है सिरों पे खिला चले। छोटे साहबजादियां ने बचन कहे सी, एक होर बड़ा कमाल दा बोल किया सी, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहन शाह की छान से, उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जबान से। कहिंदे मूर्ख अब्दाली नू की पता है भी बड़ी पुरश ने ए गुरु का खालसा सजया, एदियां नीयां शहीदां दे सिरां ते टिकियां होईयां हन।
1: लड़ते मरते वधदे जाए,
0: जिन्ने भी सिंह जंग करदे ने शहीद होंदे ने ओने होर जम पैंदे ने, ओने होर तैयार बर तैयार हो जांदे हन जी।
1: मुल्लों किसते नायक पाए,
0: कहिंदे मुल्लों भी मुढ तो भी ए खालसा गुरु का किसे तो मारिया नहीं जावेगा, खालसा जी ए खत्म नहीं होवेगा।
1: जिम काटे ते फले गुलाब,
0: वाह आखो सतनाम श्री, क्या बात है, कैसी सोहनी कलम लिख दे ने। कहिंदे जिवें गुलाब दा फुल है ना जी, ओदियां कलम आपां कट दिए होर वध दियां ने, होर वध दियां ने। ए गुरु का खालसा समझ लो जिवें जिवें कटिया जावेगा ना, कमल जिवें कटिया जांदा होर जड़ा किनिया किनिया शाखा पैदा हो जांदियां ने। कहिंदे गुरु का खालसा इउं वधदा जांदा ते वधदा ही रहेगा। गुरु प्यारियो
1: तिम ए वधा पाए अजाब,
0: अजाब दा अर्थ हुंदा है फारसी दा लफ्ज़ है अजाब दुख। जिवें जिवें खालसा दुख झलदा है ना, तिवें तिवें खालसा होर वध

सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की, जो प्रभ को मिलबो चाहे, खोज शब्द में राज करेगा खालसा, आकी रहना ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन

देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बैठायो, रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जम पहै,

तिन कुम कुम जाए। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी। जिन गुर की कीती चाकरी तिन साध

लै फिर देह। गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विगसै वे परवाहु, साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाव अपार, आखह मंगह देह, देह दात करे दातार, फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार, मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानिया सब आपे सचियार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान, गाविया सुनिया मन रखिया भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहिया समाई, गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जे हाओ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, तीरथ नावा जेते सपावा, विन भाने के नाए करी, जेते सिरठ उपाई, वेखा विन कर्मा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चार यार जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए, चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के, कीटा अंदर कीटकार दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे ते हा कोय ना सुजई, जे तिस गुण कोय करे, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लोह पाताल, सुनिया पोहे ना सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद, सुनिया मुख साला हनुमंद, सुनिया जोग जुगत तन भेद, सुनिया सासत सिमृत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया अठसठ का इसनान, सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिया लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया सरा गुणा के गाह, सुनिया सेख पीर पात साह, सुनिया अंधे पावह राह, सुनिया हाथ होवै असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, मने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछै पछुताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोहे चोटा ना खाए, मन्नै जाम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पत स्यो प्रगट जाए, मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को

तीन कहिजा भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोता गावहो हरि के रामान जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सत गुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ सुवामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हो सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमानी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नौ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जन पावै पावै ता सो जान देहे जिसनु होर क्या करहै वेचारिया एक भरम भूले फिरहै दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावै कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै आवहो संत प्यारिहो अकथ की करहै कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर काओ हुकम मन्यै पाईऐ हुकम मन्हो गुरु केरा गावहो सच्ची बाणी कह नानक सुनहो संत हो कथेहो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा।

भावे जो सास ग्रास ते आए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावे जिसन दयाल हुए मेरा स्वामी

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम नूं सुनना करना जीओ। कृपा करके नेत्र वंदर कण

के रसना पवित्र करो, प्यार सहित दोनों हाथ जोड़ के जरूर आख्या करो वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, राम दास होए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईऐ, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिय, घर नौ निध आवै ताए, सब थाई होए सहाय, दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थाई होए सहाय, दसाही पातशाहियां दे प्रतख सब रूप, जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ, दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिब जादे, चाली मुक्ते समूह संगतां, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां आप जी दा नाम जपिया, वंड के छकिया, देग चलाई तेग वाही, देख के अण डिठ कीता, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पावन कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए गए, बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए, सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे, खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता, जंडा नाल बन के साड़े गए, देगां विच उबाले गए पुठियां खलां लोहाइयां, गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासा संग निभाही, तना समूह शहीदां दी पावन पवित्र कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पावन कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, चित आवे चित आवन का सदका, सर्व सुख होवै जहां जहां, खालसा जी साहिब तहां तहां, रछे आ रियायत देग तेग फतहे, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाए, खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी।

तिरायंत न पारावरिया। राग आसा महला चौथा। सोह पुरख एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सो पुख निरंजन हर पुख निरंजन हर अगमा अगमा पारा। सब त्याव है सब त्याव है तुझी हस।

हरती आवो संतों जी, सब दुख विसारन हारा। हरि आपे ठाकुर, हरि आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हरे को भुग समाना, एक दाते एक भिखारी जी। सब तेरे चोज बिडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी। हम तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी। तेरे क्या गुण आहवकाना, जो सेवा है जो सेवा है तुझी। जन नानक तिन कुरबाना, हरतिया वह हरतिया वह तुझी। से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पै। जिन हरत्याया जी, तिन टूटी जमकी पासी। जिन निरभौ जिन हंदौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहा तो जी, हर अनक अनेकता। तेरी अनक रे हर पूजा जी। तप तप है जपै बेअंता, तेरी अनेक पढ़ै बहु सिमरत साह जी। कर क्रिया खट कर्म करंता,

तू आद पुरख अंबर पर करता जी, तुझे बड़ा अवन ना कोई। तू जो जो एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुझी आपे भावे सोई वर्तै जी, तू आपे करह सो होई। तुझी आपे सिट सब उपाय जी, तुझी आपे सिज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार बैडा साई। जो तू पावे सोई तिसी, जो तू दे सोई हूं पाई रा। सब तेरी तू सब नीति आया, जिसनु कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तुंदिया स तुझी माए, तुझमें दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेला, विंजो मिल विछड़िया संजोगी बेला। जिसनु तू जाना है सोजन जाना है। हर गुण सदिया वखाना, जिन हर सेविया तिन सु पाया। सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर ना कोई, तू कर कर वेख है जाने सोय। जन नानक गुरमुख प्रगट होय। आसा महला पहला, तित सर्व डलै पहले निवासा। पानी पावक दिने किया, पंक जो मोह पगने चाला। हम देखा तै डूबी अले, मन एक न चित मूड मना। हर बिसरा तेरे गुण गलिया रहा, ना हो जति छतीनी पड़िया। मूर्ख मुगदा जन्म पया, परनवत नानक तिनकी सरना।

जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा, जब तक संजय तरन कमाया सिवा साधना जानिया राया, कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की राखो शर्मा, कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की राखो शर्मा, कभियों बाज बेनती चौपई हमरी करो आदर चा, पूर्ण होए चितगी चा तब चंदन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतबारा हमरे दुष्वै तू काव हो, आब हा दे मोहि बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, शिव से सुबह करतारा मोर चा निज करदा करिया,

तोर बज की रह प्यासा, तुम्हें चार कोई अब न त्याओ, चुभ चाओ सो तुम ते पाओ, शिव सिख मारे तारी है, चंचन सतन मारे मारी है, आप हादे मुजबरिया है, मन का त्रास निवरिया है, हुज सुदा मारे पचा, श्री अस तो जो करियो रचा, राख लिहो मोराकन हार, साहिब संत साहे प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम अपरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए सीजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल का किया तमाशा, जमन का जोगी शिव कियो, वेद राय ब्रह्मा ज्योति यो, जमन का सलो स्वारा, नमस्कार है ताई हमारा, जमन का सब जत बनायो, देव दया जचन बुझायो, आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सगल प्रजा जिन आव सवारी, शिवकन को सबगुण सुख दियो, सतन को पल मोहम्मद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चिंटी दे कुंज रसूला, सब कृपा दिख कर फूला, संतन दो पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पहचाना, कट कट के पड़बड़ की जाना, जब्द कर करा करता रहा, प्रजा तत् तब दे अपारा, जब आकर करतो कब हो, तुम मैं मृत देत सब हो, जेते बदन से सब तारा, आप अपनी बोझ उचारा, तुम सभी तेरे निरालम, जानत वेद भेद आलम, निरंकार निरपकार निर्लंब, आद अनिल अनाद सांब, ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताको कर पहान अनुमानत, मां मूल कछ भेद न जानत, मां देखो कै सदा सेवा, निरंकार का चिंतन पेवा, आप अपनी बुद्ध है जती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखन जाए पसारा, कि बस जा प्रथम संसारा, एक रूप अनुसूपा, रंग पयो राव की पुपा, अंडा जेर सिद्ध किनी, उत्पज खान बौदिनी, कौं फूरा जावे बैठा, कौं सिमट पयो शंकर इकैठा, सिगरी शिष्ट दिखाया चंपव, आद जगाद सुरू सियंपव, अब्रचा मेरी तुम करो, सिख उबार ऐसे क्या संग्रो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सगलम लेच करो रन काता, जी अस्तु तसन्नी परे, तिनके दुष्ट दुख तो है वह मरे।
पुख जन परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल कोई बात आए हैं ताके काल निगने हैं। सच्चा हुए ताए सब काला दुष्ट हरि टरे तत्काला। कृपा दिष्ट तन जाए निहर हो ताके ताव तनक में हो रहो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब हो दुष्ट शास है सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पाते ताई उबारा। चिन्ह नाम त्यारो कहा दर्द दुष्ट दो तेरा। खड़क कीत में शरण त्यारी आप हाद लियो बारी। सर्व ठोर मोहो सहाय दुष्ट दोगते लियो बचाई। सवैया पाए गए जब दे तुमरे तब दे कुंवा तरे नी आनियो। राम रही पुराण कुरान अनेक अहमत एक मान्यो। सिमरत सातर भेद सब बो भेत का हम एक ना जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तुही बखानियो। धोरा सगल द्वार को चांद कै गयो तुहारो द्वार। बाहें गए की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को चांद कै गयो तुहारो द्वार। बाहें गए की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुरु तह पाया। सहज सेती मन वजियां वादाइया। राग रतन परवार परियां सबन गावनी आईया। सबदो तें काबो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रोहन आले नारो तू मन मेरे। दू सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा। काज सब सवारना सबना गलां सुमरत स्वामी। सो के मनो विसारे कह नानक मन मेरे। सदा रहो अनाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा। करता तेरा सब जै जिस देह सो पावे। सदा से सदा तेरी नाम मन वसावै। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नान सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा। सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुखमन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता कुर बिट हो। जिस दियां ए वडियाइया

सगल समग्री तुम रे सूतर तारी तुम ते होए तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियै घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी पांच प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते समूह संगतां।

बिनवंत नानक दया धर हो काड पवजल फेरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।